आपके हसीन रुख, संग बाय मोहम्मद रफी, कंपोज्ड बाय ओपी नैयर. होप यू लाइक इट. द नेक्स्ट वन इज कंपोज्ड बाय नौशाद फ्रॉम द 1967 मूवी राम और श्याम, संग बाय मोहम्मद रफी अगेन. एंड लेट अस लिसन टू दिस सॉन्ग पिक्चराइज्ड ऑन दिलीप कुमार.